कियो घट घट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचरिया स्थूला सपर कृपा दुष्ट कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पशन्न घट घट के पट पट की जान है।

मुझे व्रत भरिया चौन चौन शत्रु हमारे मरिया देख देख जग में दऊ चल राखा मह और नांदला तुम मम करो सदा प्रत पारा।

सिर न्याय पंथ चला तब जगत मैं जब तुम करो सहाय दोहरा जे जे तुमरे ध्यान कहो नितुड़ ध्याय हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा कालपुर की देह मोह कोटक विशन महेश कोट इंद्र ब्रह्मा किते

संवत 1755 हाड़बदी प्रथम सुगदावन त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा पूल परी लो लो सुधारा दोहरा नेत्र तुंके चरण।

किन कहिया क्यों देखिया भाई करता एक अकथ। गुरु गोविंद सलाहिया भाई जिस ते जापै तथ।

सिखानो सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विसाह दान प्रसाद दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवा मत उची मत पद दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

पिता, प्रभु को सिमरै तने आनंद घनेरे, प्रभु को सिमरै बसे हरनेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरा भाग, प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबू ना चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन नेचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार, सिमरहे से जन जिन कहो प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद पाए, हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नी चौंकुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा,

हर हर जन के ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर सराते, सुन्न समाध नामृत समाते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त भाव करे, नानक जन संके

संत वसाए, संत प्रताप दुर्त सब नसाए, संत का संग बड़ भागी पाइय, संत की सेवा नाम ते आइय, नाम तुल कश अवर न होए, नानक गुरमुख नाम पावे जन कोई सरोक। बहु शास्त्र बहु सेमृति पेखे सर्वट

तेरे तुमरी कृपा में सुकने रे, कोई ना जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरा सूत्रधारी, तुम ते हो सुआज्ञाकारी, तुमरी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी सलोक।

पतजाए अष्टपदी। दस वस्तुले पाछे पावे, एक वस्त्रकार मिखोड़ गभावे, एक बिना दे दस भी हरले तो मूढ़ा कहू कहा करे।

गुरुदेवष्टपदे निप्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिष्ठा गुरु को रखमन माहे निप्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे निप्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ध्याए सदा मनंदर निप्रसाद ग्रह संग सुख बसना आड़ भैर सिमरोत सरसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याय ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख सेज सोई जय मनाठ पैर ताका जस गावी जय जय प्रसाद तू सब कहु मान मुखता को जस रसन बखान जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जब दरगे मान पावे नानक पत सेती कर जावे जय प्रसाद आरू कंचन देही लिबलावत सराम सनेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख भावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताका है जय प्रसाद तुझको ना पहुँचाए मन सा सा सिमरो प्रभु उचे जय प्रसाद भाई दुर्लभ दे नानकता की भगत करे जय प्रसाद अभूखन पह रिजाए मन ते सिमरत क्यों आलस गिजाए जय प्रसाद असवहस्त सवारी मन दिस प्रभु को कबू ना बिसारी जय प्रसाद बाग मिलख तना राख प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत से त्याई तिसे त्याय जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरे रख है जय प्रसाद करे पन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सुप्रभ सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत्र है गुरप्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद वेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले जय प्रसाद परमंगत पावे जय प्रसाद सुख सहज समावे ऐसा प्रभ त्याग बरकत लागो गुरप्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद

जप शुभ नाम आप गावा हे शुभ हर गुण गाव प्रभु गिर भाते हुए प्रकाश प्रभु दयाते कमल विगास प्रभ सुप्रसन्न बसे मन सुय प्रभ दयाते मत उत्तम होय सर्वनिधान प्रभ तेरी मया आपो कशु न किन्हू लया जित जित लाभो।

राजा कब भिखारी निज का साजा, कबू आप कीर्त में आवे कबू भला भला कहावे, ज्यों प्रभु राखे तभी ही रहे गुरप्रसाद नानक सच कह, कबू हुए पंडित करे बखियान कबू मोहन धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिसाधक मुख ज्ञान, कबू कीट हस्तंग हुए जिया अनंग जोन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे जो प्रभावे तवे न जावे, जो तिस भावे सोई हुए नानक दूजा वर न कोय, कबू साह संगत पावे उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतरवे ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश, मंथन नाम रते करंग सदा बसे पार ब्रह्म कै संग, ज्यो जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सतगुरबान सलोक, सुखी बसे मसकीनिया आप निवार तरे, बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपति, जिसके अंदर राज विमान सो नरक पाती समान, जो जाने मैं जो बनवंत सोहबत विष्टा का जंत, आप को कर्मत कहावे जन्म मरे बहु जोन परमावे, धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्खंदा अज्ञान, कर कृपास कह हृदय गरीबी बसावे नानक इहां मुक्त आगे सुख पावे, धर्मंता कर बावे त्रेन समान का संगना जावे, बहु लश्कर मानुक प्रकार।

सब कश उसका वो करने हार, उसते भिन्न कहा हो किशो हे थान धनंतर एका सोए, अपने चल दाव करने हार कौतक करे रंग आपार, मन में आवन अपने माहे नान की मन कह ना जाए, सत सत सतप्रभ स्वामी गुरु प्रसाद कने बखयानी, सच सच सत सबकीना कोट मदे कने बरलै छीना, भला भला भला तेरा रूपा सुंदर बार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घटगड़ सुनी सरवन बखयानी, पवित्र पवित्र पवित्र प्रनीत नाम जपै नानक मन प्रीत सलोक, संत सरण जो जन पर सोजन उदरण हार, संत की निंदा नानका बहर बहर अवतार अष्टपदी, संत गए दुख ने आर जा कटाए, संत गए दुखन जमते नहीं छुटाए, संत गए दुखन सुख सब जाए, संत गए दुखन नरक में पाए, संत गए दुखन मातोए मलीन, संत गए दुखन सोबाते हीन, संत गए हते को रखे ना कोए, संत गए दुखन थान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे नानक संसंग निंदक पी तरा, संत गए दुखन दे मुख भय, संतन गए दुखन काग जो लवे, संतन संतन गए दुखन सर्व जोन पाए, संत गए दुखन त्रगत जोन किरमाए, संतन गए दुखन तृष्णा में जले, संत गए दुखन सबको शलाए, संत गए दुखन ते सब जाए, संत गए दुखन नीच नी जाए, संत दुखी का थाऊ को नाहे, नानक संत भावे ता ओए भी गत पाहे, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक न पाई, संत का निंदक मात हरा।

संगा दुखी सदा अपवित, संगा दुखी किसे का नहीं मित, संगे दुखी को डाल लागे, संगे दुखी को सब त्याग, संगा दुखी मां अहंकारी, संगा दुखी सदा भिकारी, संगा दुखी जन मैं मरे, संगी दुख ना सुख ते ठराए, संगे दुखी को राही ठाहू, नानक संत पावे तलय मिलाए। संगा दुखी अदबी ते टूटा है, संगा दुखी किते काज ना पहुंचाए, संगे दुखी को ध्यान भरमाई है, संगा दुखी उजड़ पाई है, संगा दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोथा, संगे दुखी की जड़ किश नाहे, आपन बीजा पहे खाहे, संगे दुखी को अवरना राखन हार, नानक संत पावे तलय उबार, संगा दुखी एओं बिल लाए, जो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संगा दुखी भुखा नहीं राजे, जो पावक इंदन नहीं त्रपै, संगा दुखी छुट अकेला, जो बुआर तिल खेत माहे दुहेला, संगा दुखी धर्म ते रह, संगा दुखी सदमिथिया कहत, कीर्तनंत का तुरही पया, नानक ज्योत सभावे सोई थिया, संगा दुखी बिगड़ू पे जाए, संगे दुखी को दरगे मिले सजाए, संगा दुखी सदा सहकाई है, संगा दुखी ना मरे ना जीवाई है, संगे दुखी की पूजना आशा, संगा दुखी उठ चले निराशा, संगे दुख ना त्रिष्टा कोए, जैसा भावे तैसा कोई होए, पया कीर्तना मेटा कोए, नानक जाने सच्चा सोए, सब कट तिसके वो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तसे ते आवो सास गिरास,

सीपे सच अष्टपदी चरण सात सत प्रसन्हार पूजा सात सत सेवदार दर्शन सात सत पेखनहार नाम सात सत आवनहार आप सात सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सात सत पर भगता सुरत सत सत जा सुनता बुजन हर को सा सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सा सुर हृदय जन मानिया करण कराम तिल मूल बछानिया जाके हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तस मन प्रगटाया पैथे निर्भोय बसाना जिते उपजा तस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाही

प्रभु का सेवक नाम गहरंग, सेवक प्रपरण हारा, सेवक ही राखे निरंकार, सो सेवक जिस दया प्रभु धारा है, नानक सो सेवक साथ साथ संभार है, अपने जन का पर्दा ढाक है, अपने सेवक की सरबर राख है, अपने दास को दे बढ़ाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राख है, ताकि गदमित कोय ना राख है, प्रभु के सेवक काओ को ना पहुँचाए, प्रभु के सेवक ऊंचते ऊंचे, जो प्रभु ने सेवा लाया, नानक सो सेवक दया दस प्रगटाया, निकी कीरी में कल राख है, भस्म कराए लश्कर कोट लाख है, जिसका सासना काट त्याप, ताको राख देख रहात, मानस जतन करत बात, तिसके कर्तव्य व्यर्थे जात, मारे ना राखे अब न कोय, सर्व जिया का राखा सोए, काय सोच करे रे प्राणी, जब नानक प्रभु राख विडाणी, बारंग बार बार प्रभु जपिया, पी अमृत मन तंत्र पिया, नाम रतन जन गुरमुख पाया, तिसके शब्द नाही दृष्ट आया, नाम तन नाम रूप रंग, नामो शुक्र नाम का संग, नाम राजो जंत्र बताने, मंत्र नामे नाम समाने, उठत बैठ सोबत नाम, कब नानक जन कह सतकाम, बोलो जस जय बादन रात, प्रभ ने जन कीनी दात, करे भगतात्म कह चाहे, प्रभ अपने स्यो रहे समाए, जो होवा होव सो जाने, प्रभ ने गाओ कम बशाने, तिसकी मैं माँ कौन बखाना, तिसका गुण का एक ना जाना, आठ पैर प्रभ से हजूरे,

राष्ट्रपति संजना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव सब मीत विसारो चरण कमल हृदय में उतारो कर्ण कारण सुप्रभ समरथ दृढ़कर गह नाम अरवथ ए तन संचो हो वो भगवंत संजना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठता मैं सो तन हर से बाते पावे जिस सुख को नित बांछे मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करे भली करनी सा शोभा बज हर की सरणी अनुगपावी रोग ना जाहे रोग मिटे हर अब खदलाए सर्व निधान में हर नाम निधान जब नानक दरगे परवान मन प्रबुद्ध हर के नाये दैत्य स्थावत आ बैठाए ताको बिघन न लागे कोय जाके हृदय बसे पर जाके हृदय बसे हर सोए कल ताती ठंडा हर नाव सिमर सिमर सदा सुख पाओ पवन से पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास तितकर जाय बसे बनासी कहो नान काटी जम फांसी ताद विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवागमन मटे प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव एवं रतन जन्म गावे उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनुग भावना छुट नहारे सिमरत शास्त्र भेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंचित नानक फल पाए संगला चाल तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सुत मीत कुटम अर बनता इंते कह हो तुम कमन सना था राज रंग माया विस्तार इंते कह हो कमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पा सारी जिन दिए तुझ बुझे ना बेगाना नाम मिसार नानक पछताना गुर की मातू ले आने भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के गिल भग जाहे आप जपो अवर नाम जपाव सुंद कहत रहत गद भाव सार पुज सतर को नाव सह सुभाए नान गुन गाव गुन गाव त्रि उतर समैर बिनस जाए होमे बिख फैल होए अचंद बस सुखनाल सास गिरासर नाम समाल शाड सियालम सगरी मना सास संग पावे साजतना हर पुंजी संज करो व्यवहार यहाँ सुख दरगाह जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सारा एक सिमर एको मन आहे एक असगे गुण गाव अनंत बंधन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आव पूर्ण पूरे प्रभ्याप अनक विस्तार एक दिवय एक राध

कोई जिन चाख्या से चंद्र बताने पूर्ण प्रहीन पुरख नहीं डोलाने सो भर परे प्रेम रस रंग बुझे चाओ साध गए संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रकाश अंधिल विलाग बट भागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुखोए। सेवक की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक इन्नो सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इश्वनी सरदा सब पूरी रब रया स संग झूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सुख बिसर जय का हल्ला भन है

पाष्टपदी जब कार्य काशना दृष्टेता पापन तप कहते होता जब तारी अपन सुन समात बैर विरोध के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हर सो कहो किसे व्यापत।

अष्टपदे पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमरो गोविंद मन अंदर की उतरा चिंद आस नित्या गोतरंग संजना की दूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहु सा संग अगन सागर तरहु हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद सा संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित्तवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलीक लाल ए रतन सुनत कमावत हो उदार आप तरह लोक के निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लगा रंग जय जय शब्द अनाहत बाजे सुन सुन अंत करे प्रभ गाजे प्रगटे गोपाल महंत के माथे नान उदरे तन का साथे शरण जोग सुन शरणी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर भये सवरेन अमृत नाम सास संग लैन सुप्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुंदर सना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुरु नाम जिस मन बसे सोत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सबते ऊंच पाए स्थान बहुर न होवे आमन जान हर तन खाट चलाए जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम सांत रिद नम निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश सबके मत सकल देवदास सुंदर चतुर्थ का बेता समदर्शी एक दृष्टेता हे फल तिजन के मुख परे गुरु नानक नाम वचन मन सुने यो निधान जपे मन कोए सब जुग में तागीगत होए गुण गोविंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत के मन विश्राम कोट पराध सासंग मिटै संत कृपा ते जमते छुटै

असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पाख सार

ते नमस्तः तरागे नमस्तं सुहागे नमो सर्वसौखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो बहु भोगे नमो सर्वदयाले नमो सर्वपाले चाचरी शांत है प्रसाद रूप है अनूप है जू है पू है लेख है पेख है नाम है काम है अतेह है अपेह है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अगंज है अपाज है अचूज है अचांज है अमीक है रफीक है अतंध है अभंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है

ही वह चित मत पर शांत वह प्रसाद गुण गण उदार महिमा पार असने भंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश

हैं पवित्राय परथि से अदि से अदृश्य कृष्य भगवती शांत वय प्रसाद कहते के अचिज देस है के अभिज भेस है के अगंज कर मैं के अपंज भर मैं के अभिज लोक कह कह देत सुख कह के बतूत बरन है के विभूत करने के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुझा है के अशोक बरने के सर्वाय भरने के जगतंग रीति है के शत्रंग क्षत्रि है

मनः अकलं कृतः सर्वाकृतः कर्ता करः हर्ता हारः परमात्म है सर्वात्म है आत्म वास है जासके जास है पजांग प्रयाशंद।

कृति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते कृति बिने कृति के भाते मतांग जरे जर संग अनूप तरंग सुरंग सुवारे भाते मतांग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोड़ तुरंग कुरंग से कुद पवन के गौन को जात निवारे पारी बजान के पुह पली बिदन आव सीह न जात बिचारे ते पहे तो कहा पहे पुहत अंत को नांग ही पाए पधारे जीत फिरे सब दे दिसान को बाज ढोर मृदंग नंगारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर

पड़पड़ गड्डी लदी है, पड़पड़ भरिए साथ, पड़पड़ बेड़ी पाई है, पड़पड़ गड़िए खात, पड़िए जेते वरस वरस, पड़िए जेते मास, पड़िए जेती आरजा, पड़िए जेते सास।

कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पैन नहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होई खार कूड़ कूड़े ने हो लगा।

माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलाप है अठ नंदन प्रथम राग भैरो बै कर ही पंच राग नि संग उचरही प्रथम भैर भी बेला बली पुनिया की गाव है बंगली पुन असली की पै बारी ए भैरों की पंच ओ नारी पंचम हरक साग सुनाव है बंगालू मद माधव गाव है ललत बलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अष्टपुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थाप है गुण करी अरदेव गंधारी गंधारी सी हुती उचारी तनासरी ए पंचो गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड कौशक ओ बारा खाओ खट ओ पौरा नद गाये अष्ट माल कौशक संगलाये पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठा तान कलोल गायन तार मिलावी ते लंगी देव करी आई बसंती संदूर सहाई सरस हिरी लै पार जा संगलाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिम मंगलन सोहाए सरसवान ओ आहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा अष्टपुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कछेली पट मंजरी टोडी कही अलाप कामोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गौरा ओ कंदरा कल्याणा अष्टपुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गाव पंचो संग बरंगन लाव बैरारी करनाटी तरी गबरी गाव आसावरी तह पाछ संत भी अलापी श्री राग स्यों पंचो थापी सालू सारग सागरा और गोंड गंभीर अष्टपुत्र श्री राग के गोंड कुंभ हमीर खाष्टम मेघ राग वै गाव पंचो संग बरंगन लाव सोरठ गुण मलारी तुनी पुन गाव आसा गुन गुनी उच्चै सुरसु हों पुन कीनी मेघ राग स्यों पंचो चीनी

ताहिउ वडाण आदेत से आदेश आद अनिल अनाद नाथ जुग जुगे को वे सासन लोय लोय भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सचे की साची कार आदेत से आदेश आद अनिल अनाद नाथ जुग जुगे को वेस एक दूजी पव लख हो है लख होवे लख वीस लख लख गेड़ा की एक नाम जगदीश ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए अकीस सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस नानक न

ऐसा कोए सेवो सहब समराथे अपना पंथ सुहेला आगे पंथ सहेले जावो तां फल पावो आगे मिले वडाई भेटे स्यों जावो सच सुमावो तां पत लेखे पाई महली जाय पावो खसमे पावो रंग स्यों रलिया माणे मरन ना मंदा लोका आखी है जे कोई मर जाने मरण मुनसा।

नानक जुग जुग जान सजाना रूवै सच समाले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया शब्दू तां गावो हरि केरा मन जनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरा दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सुवारना सबना गल्ला समरा स्वामी सो क्यों मनो वसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा है घर तां तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे।